0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

और किसी ने क्या खूब कहा है कि यार पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ की चुड़िया है, बिंदी है, सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बात एकदम सही है यार। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जब बाप गुजरता है ना तो घर का छत गुजर गया ऐसा महसूस होता है। तो तेरी बाप की अहमियत होती है, लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि यार सभी कवियों ने, राइटर ने ना तो बस माँ के बारे में लिखा है, बाप को क्यों इतना इग्नोर किया पता ही नहीं यार। इसका सवाल ना तो सभी कवियों से मैं पूछना चाहता हूँ और मैं भी तो एक लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ये सवाल मुझसे भी है कि यार क्यों नहीं लिखते यार हम लोग पापा के बारे में। खैर अब उसका जवाब मिले तो मुझे जरूर बताना। लेकिन आज है फादर्स डे। जी हाँ, पापा का दिन है आज। कितने लोगों को पता है कि आज फादर्स डे है? बहुत कम को पता होगा। यहाँ तक कि जिनका दिन है यानी कि पापा लोगों का दिन है ना, तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि आज फादर्स डे है, क्योंकि यार ये लोग ना तो खुद की खुशियाँ ढूंढना, खोजना सब कुछ बंद कर देते हैं आपके खातिर। बंद कर देते मतलब उन्हें ख्याल ही नहीं रहता है कि हमारे लिए भी ना कुछ दिन होता है। सो आज है फादर्स डे, तो सभी फादर्स को, मेरे अब्बू को भी, आपके पापा को, अब्बू को, बाबा को, मेरी तरफ से तहे दिल से हैप्पी फादर्स डे। सो आज इसी पर बात करेंगे। खैर कवियों ने ज्यादा बात तो नहीं की बाप पर, लेकिन आज आरजे अदनान आपके साथ बस बाप पर बात करेगा। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

सो आज हम वो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जो बहुत खास दिन है। आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। आज हम बात कर रहे हैं और वो दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको कहते हैं फादर्स डे। तो आज है फादर्स डे और आज के दिन ना तो एक बात समझ में आती है हमें, और एक उम्र के बाद ना तो ये सारी बातें समझ में आती है, और पापा की बातें हमें समझ में आती है कि अब समझ में आ रहा है कि पापा क्यों फटने तक नए शूज़ नहीं लेते थे। अब समझ में आ रहा है कि पापा को अपने बर्थडे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अब समझ में आ रहा है कि पापा के लिए लाइट वाले का, प्लम्बर वाले का कॉल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता था, इमरजेंसी में यही काम आते थे। अब समझ में आ रहा है कि पापा गजलें क्यों सुना करते थे। अब समझ में आ रहा है कि पापा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आने पर इतने खुश क्यों हो जाते थे, और अब समझ में आ रहा है कि पापा एक ही बार्बर के पास क्यों जाते थे। अब समझ में आ रहा है कि पापा की लव लैंग्वेज हमारे फेवरेट फ्रूट लाने में क्यों थी। ये बात हमें तब समझ आती जब हम एक उम्र के बाद उतने समझदार होते हैं। बचपन में तो ये सभी बातें ना तो बहुत वेली लगती थी, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है जब जिम्मेदारी अपने कंधों पर आती है ना तो पापा की हर एक बात हमें समझ में आती है। जितना जल्दी हो सके उतना समझिएगा इन बातों को, और आज फादर्स डे यार थोड़ा वक्त अपने पापा के साथ गुजारिएगा। बाकी तो सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम।

बचपन में जब पापा की शर्ट हम पहनते थे तो उसमें खो जाते थे। शर्ट बड़ी होती थी और हम छोटे, लेकिन एक बात कभी छोटी नहीं थी, वो थी उनका भरोसा। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे। पापा वो इंसान है जो कम बोलते हैं, लेकिन उनके हर काम में हमारा नाम छुपा होता है। जब घर देर से लौटते हैं, जब हमारे लिए अपनी जरूरतें टाल देते हैं, जब हमारी फीस भरने के लिए खुद के जूते पुराने पहनते हैं। हम बड़े होते गए, पापा छोटे होते गए, कमजोर नहीं बस थोड़े थके हुए से। लेकिन आज भी जब कुछ अच्छा होता है सबसे पहले उन्हें बताने का मन करता है। फादर्स डे सिर्फ एक डे नहीं है, ये हमें याद दिलाने का दिन है कि जिस इंसान ने हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, क्या हम उनके लिए थोड़ा वक्त निकाल नहीं सकते? तो आज चलो पापा की वो पुरानी शर्ट ढूंढते हैं और उन्हें गले लगा कर कहते हैं कि थैंक यू पापा, आपने हमें जितना दिया वो शायद हम कभी लौटा ना पाए, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। सो हैप्पी फादर्स डे एंड ये अगला गाना पापाओं के नाम। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

हम सबके पापा लगभग एक जैसे होते हैं, सख्त होते हैं, कभी शांत होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते लेकिन दिल में बहुत कुछ रखते हैं। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। पापा वो लोग होते जो कभी आई लव यू बेटा बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले वही खड़े नजर आते हैं जब आप बाहर रहते हो।

तो कहते कि लेट नाइट तक बाहर मत घुमा कर, अच्छे दोस्त बनाया कर। अब ये क्यों कहते थे पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा था पापा ने। वो सुपर हीरो नहीं होते, लेकिन उनकी झुकी हुई कमर, उठाए गए बोझ और खाली जेब में हमारे लिए सपनों की एक अलग जगह होती है। आज फादर्स डे है, अगर आपके पापा आसपास है तो गले लगाइए यार, अगर दूर है तो कॉल कीजिए, अगर कुछ मन में है तो कह दीजिए, क्योंकि हम बहुत कुछ कहने में देर कर देते हैं और पापा बिना कुछ कहे सब कुछ कर जाते हैं। हैप्पी फादर्स डे हमारे अनसंग हीरोज को। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: यार बचपन में जब पापा पुराने गाने सुनते थे ना,
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
0: तो लगता था कि यार पापा कितने बोरिंग गाने सुन रहे हो यार, क्या है इसमें, कुछ मजा ही नहीं है, मुझे तो ये गाना सुनना है। खैर मैं यहाँ पर किसी भी गाने की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार आज के गाने भी अच्छे हैं, लेकिन जो मजा और जो सुकून ना पुराने गानों में था ना, वो आज के गाने में थोड़ा कम नजर आता है। जैसे कि आज भी अगर आप ना तो रात के वक्त कहीं बैठे हो एकदम सुकून वाली जगह पर, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है, नए गाने प्ले करना नहीं, वही 70s 80s और 90s के गाने प्ले करना, क्योंकि पुराने गानों में जो सुकून है, जो मजा है, जो अपनापन है, और उनके जो लिरिक्स सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये गाना तो मेरे लिए लिखा गया था, यार किशोर कुमार जी ने क्या सुंदर गाया है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल की आवाज किशोर जी गा रहे हो, यार लता जी की आवाज मतलब माशाल्लाह। तो ये एक मैजिक था पुराने गानों में, और ये मैजिक ना आज तक चलता आ रहा है और आने वाले कई सालों तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में तो बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे गाने तो बनेंगे, लेकिन जो मेलेडियस गाने थे, जो सुकून भरे गाने थे, जो सुनने के बाद ना तो मन को तसल्ली मिलती थी, कानों को सुकून मिलता था कि आज बहुत ही बेहतरीन चीज हमने सुनी, वो बस बात पुराने गानों में ही है। तो चलिए फिर अब संगीत दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब जरा अपने पुराने और एवरग्रीन गाने एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में, लता मंगेशकर जी की आवाज में, और ऐसे फनकारों के गाने अभी आपके कानों पर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान, एंड फिर से एक बार आपको तहे दिल से म्यूजिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक्स एंड स्टे ट्यून्ड।

एक सवाल माइंड में आता है कि यार आज के दौर में बिना तो लोगों को पुराने गाने क्यों इतने पसंद आते हैं। MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है, और ये सवाल ना तो हर किसी के माइंड में आता है। मेरे भी माइंड में बहुत बार ये सवाल आया कि यार मैं तो आज के जनरेशन का इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गजल्स हो या फिर 70s 80s के गाने हो वो बहुत पसंद आते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो जो दौर था ना एकदम सीधा सादा सरल था, जीवन इतना बिजी वाला नहीं था, एकदम सादी जिंदगी थी। और ऐसा लगता है कि यार पुराने गाने सुनने के बाद ना तो हम उस इरा से कनेक्ट हो जाते हैं, उस दौर में अपने आप चले जाते हैं, तो जो यादें हैं ना वो एकदम ताजा हो जाती है और लगता है कि यार कितने रिलेटेबल ये गाने हैं। और तो और यार पुराने गानों में जो लिरिक्स थे और जो उनकी कहानी थी ना बहुत हर किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हर किसी को ना तो आज भी पुराने गाने बेहद पसंद आते हैं। नए गाने अच्छे नहीं होते ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी आज के जनरेशन के हिसाब से अच्छे होते, बट एक जो मजा और जो जमीन से जुड़ाव था ना गानों का वो पुराने गानों में है ऐसा लगता है। सो अभी आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो अगर आपका पसंदीदा गाना सुनना है एंजॉय करना है तो जरा मुझे DM करके बताइए उस गाने का नाम, DM करें इंस्टाग्राम पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या तो फिर व्हाट्सएप करें 9359320080 पर 9359320080 और स्टे ट्यून्ड विद RJ अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: तो आज वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर हम आपकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, वो भी गाने वाली। MGM 90.8 FM पर RJ अदनान आपके साथ है और बात कुछ ऐसी है कि अभी फरमाइश अपने पास आई है स्मिता काले जी की तरफ से इस गाने के लिए।
1: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान।
0: वाह क्या बात है यार, ओ हसीना जुल्फों वाली गाने की फरमाइश है, तो चलिए फिर स्मिता जी की फरमाइश पूरी करते हैं। आज ना तो हम आपकी फरमाइश पर गाने प्ले कर रहे हैं क्योंकि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे। अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 पर, 9359320080 पर आपकी फरमाइश पूरी कीजिए क्योंकि आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो फिलहाल स्मिता जी की फरमाइश पूरी करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9।
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: तुमच्या क्रिएट साठी योग्य पर्याय शोधताय. इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
4: Sir,

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: आरोग्य खास MGM पेट केयर पेट क्लिनिक आरोग्य तपास उपचार शस्त्रक्रिया लसीकरण अनेक पशु वैद्यकीय सेवा एक MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6 कॉन्टैक्ट नंबर 9860679130 MGM पेट केयर
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in
3: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर
4: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं यह है आपकी अपनी आवाज आपकी अपनी सोच
5: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान
4: ये है MGM 90.8 FM

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9।
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

मैं हूँ तेरा गीत गोरी, तू ही मेरी तान है। मैं हूँ तेरा गीत गोरी, तू ही

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in.
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।